0: 每个人生结束过去国内的传统神土不大四位马索和日朗姚新人春晚红还同刘芬合唱过当他结束过秋风不会巴黎明夜给他红下黑为一团真情陈文艾结束过同双艺术玫瑰人生过多年杜平爱小亚丽莎版本和国内歌手张韶涵王石也演唱过结束西班牙年的歌曲慢摇的长久四风格让正在年度沉醉在一股浪漫的氛围当中
1: 弟弟कुछ कहना था शायद उसको जाने किससे डरती थी जब भी मिलती थी मुझसे मुझसे पूछा करती थी प्यार कैसे होता है ये प्यार कैसे होता है और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: 玫瑰人生结束过去国内的传唱神土唔低。苏菲玛索和二零幺四年春晚红还同刘欢合唱过。唐朝结束过去仿佛去巴黎明夜街头巷写起为一团真情。陈文艺结束过同双艺术玫瑰人生过多年杜平爱小雅丽莎版本和国内歌手张韶涵王石一演唱过。结束是本艺人的歌曲慢摇的长久四风格让正在年度沉醉在一股浪漫的氛围当中。
1: 弟弟कुछ कहना था शायद उसको जाने किससे डरती थी जब भी मिलती थी मुझसे मुझसे पूछा करती थी प्यार कैसे होता है ये प्यार कैसे होता है और मैं सिर्फ यही कह पाता था।